0: क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।
1: ये गुलशन, फूल, कलियां, बहार, वादियां, ये मौसम, खेत, हरियाली, पहाड़, बर्फ, ये कायनात, कुछ भी नहीं। गरन में वो नहीं।
2: वो है कौन?
3: कप्तान साहब, उस लड़की का कोई नाम तो होगा।
1: नाम?

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: आपके दिल की धड़कन रेडियो फजा 97.1 FM।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are listening. We are
12: Fazan 97.1 FM.
13: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
14: 97.1 FM.
15: Zabardast hit.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ए क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baysford, Nottingham, NG7, 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?
2: साली तुम मानी नहीं, कभी तो मानेगी।
1: फिल्मी गाने,

You are listening 97.1 FM. Sub

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करे।
6: जबरदस्त हिट्स,
7: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर।
8: फजान 97.1 FM,
9: आई लव इट।

0: This is a public service announcement.
1: The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरेना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटरपीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी रابطہ करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
8: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।
0: मंगला जो भी मंगना मिल जुगा
9: जो मंगना सी वो तो मिल गया।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं, चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, यहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station. That plays
2: foot tapping music.
3: Hazar 97.1 FM.
4: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो लासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: लासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG24LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, लासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए लासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: This is a public service announcement.
8: Everybody. The station
9: that plays
10: foot tapping music.

यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ, बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
1: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर
0: फजा 97.1 FM हर पल आपके साथ साथ।

0: वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि अगला गाना है और भी जबरदस्त। जिवें बदलां दे ओले होया चन, ये है असली म्यूजिक का मजा सिर्फ और सिर्फ फजा 97.1 FM पर।
1: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
2: Radio Fazan 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-210-7932।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं। When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
8: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
7: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
8: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
7: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
9: You are listening 97.1 FM.
10: You are playing. We are playing.
11: Fazan 97.1 FM.
12: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
13: 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baysford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?
2: साली तुम मानी नहीं, कभी तो मानेगी।
1: पॉप फिल्मी गाने,

0: या फिर इंग्लिश और अरबिक। तो सुनते रहिए
1: फजान 97.1 FM।
0: हो गया ना कमाल।
2: Ready to move.
3: It's all about the beats.
4: Wow,
5: FM. Only tune Super Hit Channel.
1: Fizz on 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंगम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
0: The station with the best music.
6: I love the music.
7: Best music.
8: Fazana 87.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें राया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, राया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। राया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715-299-779 और विजिट अस एट
8: hayatweddings.co.uk।
9: Radio station for people who love music.

0: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
1: के साथ हर आवाज एक नई कहानी का आगाज।

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 FM.
1: आई लव इट.

0: What are you doing? Wow. Come on, man. Oh, are you serious? Oh, come here.
1: This is a public service announcement.
2: The station.
3: That plays
4: foot tapping music.
5: Huzzah 97.1 FM.
6: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन. सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां. तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ.

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG3 5QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
12: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर।
11: फजा 97.1 FM, हर पल आपके साथ साथ।

0: वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि अगला गाना है और भी जबरदस्त।
1: जिवें बदलां दे ओले होया चन्न,
0: ये है असली म्यूजिक का मजा सिर्फ और सिर्फ फजा 97.1 FM पर।
2: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
3: Radio Fazan 97.1 FM.

जब बात चली थी मौसम से, तो फिर आपको बताते चलें कि मौसम का सूरत हाल कैसा है जनाब। इस वक्त नॉटिंघम शहर का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम, 14 डिग्री सेल्सियस मिनिमम रिकॉर्ड किया गया है। हाय गर्मी। तो जनाब आपको ये बताते चलें कि फिलहाल ह्यूमिडिटी का लेवल है जी 0%। शाम 6 बजे तक आपके पास धूप भी निकल आएगी, लेकिन डिजी सा मौसम है, हल्के फुल्के से बादल छाए हुए हैं। और इसलिए छाए हुए हैं कि अगर आपको ये उम्मीद है कि हल्की सी भी आपको कोई बारिश की उमंग नजर आए या कोई हल्की सी उम्मीद आपके अंदर जागे, तो फिर उस उम्मीद को कायम करके रखिए, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं ना, सियाने अक्सर सियाने कह के कहीं चले जाते हैं।

अगर मुझे मिल गए तो फिर मैं डेफिनेटली उनसे पूछूंगा कि आप कहाँ गए हैं, लेकिन जब भी मैं सियाना कहता हूँ आप मेरी तरफ देखते हैं, इस चीज़ का एहसास मुझे रहता है। बेहद शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का जिन्होंने इस वक्त मुझे ट्यून किया 97.1 FM पे या फिर डैप पे या फिर हमारी ऐप पे। बिल्कुल जनाब, ऐप के हवाले से भी आपको बताते चलें, पहले मैंने बताया लेकिन मैंने बात अधूरी छोड़ दी। अधूरी इसलिए छोड़ी थी कि मैं पता करूं कि कितने लिसनर्स इन हमाक से मुझे सुन रहे हैं। किसी ने भी नहीं कहा कि जनाब आपने प्रॉपर वे नहीं बताया। मैं आपको बताता हूँ जनाब, आपने जाना है एप्पल स्टोर पे, प्ले स्टोर पे, वहां जाके आप टाइप करेंगे रेडियो 97.1 FM ऑफिशियल और फिर एक गोल्डन कलर में लिखा हुआ फला आपके सामने आएगा, बैकग्राउंड होगा पर्पल कलर का, उसको डाउनलोड कीजिए, गेट कीजिए और जब आप उसको प्ले करेंगे तो यही आवाज ठहरेगी, आपकी स्मार्ट होगी नजर गुड मॉर्निंग नॉटिंघम कहते हुए।

0: लेकिन आप कोट ऑफ द डे, कोट ऑफ द डे शामिल करने जा रहा हूं अपने इस प्रोग्राम में अपने साथ, लेकिन हल्का सा बीजीएम साथ इसलिए रखूंगा कि आपको मेरी जो मायूस कुन आवाज है शायद आप ऐसा समझे, लेकिन मेरी आवाज ऐसी नहीं है, ताकि आपको बीजीएम के साथ थोड़ी सी मसहूर लगे और आप उसको एंजॉय करें, मुस्तफीद हो, अपने दिल को थोड़ा सा ठहराए मेरे साथ और अपने जज्बात को काबू में रखते हुए अपने दिमाग को, अपनी दिमाग की ताकत को मेरे अल्फाज के साथ दौड़ाएं और फिर आपको समझ आएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। बिल्कुल जनाब, आज की कोट ऑफ द डे क्या है? कोट ऑफ द डे जनाब कारोबार के हवाले से बात करेंगे। जितने भी बिजनेसमैन है और जितने भी लोग इस वक्त ये सोच रहे हैं कि आज का दिन कैसे गुजारा जाए या आज के दिन को मजीद कैसे पुख्ता किया जाए, डेफिनेटली पूरा वीक मंडे से फ्राइडे में आपके साथ रहता हूँ, मोटिवेशन गपशप होती है, पर्सनैलिटी ऑफ द डे होते हैं, लेकिन जुमातुल मुबारक का दिन एक ऐसा दिन होता है जिसमें प्रोग्राम थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए होता है कि एक तो बड़ी पुरउम्मीद जिंदगी के साथ साथ पुरनूर रोशनी रहती है, सुबह की पहली किरण जब एक खूबसूरत उमंग नौ लेके फूटती है तो आपके अंदर की वो एहसासात भी जगाती है, वो ख्यालात भी जगाती है जिनके साथ आप हमेशा मुंसलिक रहते हैं, आपकी फैमिली, आपके रिलेशंस, आपके कारोबार। जी अब कारोबार के हवाले से आप सलातुल्लाह की बड़ी प्यारी सी कोट है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे। आप सलातुल्लाह की ज़ात का इरशाद है कि अपने कारोबार को फ़रोग देने के लिए सच्चाई इख्तियार करना और झूठी कस्मों से सख्ती के साथ परहेज करना है। बिल्कुल जनाब, ये कोट ऑफ द डे है, इसके हवाले से आपकी क्या विशेष टिप्पणी, आपकी क्या राय है, आपकी क्या विचार है, ये आप मेरे साथ शेयर करेंगे। शेयर करने के लिए सेम 01157100971 और इसके ऊपर मैं कुछ अपनी रोशनी भी डालूंगा, फलसफा नहीं बयान करूंगा, कुछ हकायक जिंदगी के आपके सामने रखूंगा और कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा जो चीज़ें हमेशा आपके लिए मुस्तफ़ीद होंगी। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को एक ख़ास तरीके पे लेके आएंगे, ख़ास तरीके कार पे लेके आना चाहते हैं, या अहदिन सिरात मुस्तकीम का वो पहलू साबित करना चाहते हैं, ये साबित करवाना चाहते हैं, लोगों को ये बताना चाहते हैं कि भाई मैं सीधे रास्ते पे हूँ, मैं उन लोगों के रास्ते पे नहीं हूँ जिन पे अल्लाह की ज़ात का ग़ज़ब हुआ, और अल्लाह की ज़ात ने कभी भी हमें उन लोगों के रास्ते पे नहीं चलाया, इसलिए तो उम्मत मोहम्मदी में हमें शामिल किया और उसके बाद इतनी प्यारी सी साउथ एशियन कम्यूनिटी दी, फिर नॉटिंघमशायर जैसा खूबसूरत सा सिटी दिया, और उसके बाद एक खूबसूरत सा यूके या वेस्ट मिडलैंड या इंग्लैंड, कहीं भी दुनिया में किसी जगह पे भी हम पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेश या कहीं से भी कोई बंदा रिलेट करता है साउथ एशियन कम्युनिटी, जब इकट्ठे हो जाते हैं फिर ब्लेसिंग्स आती हैं, फिर अल्लाह ताला की ज़ात की रहमतें आती हैं, फिर आप सलातुस्सलाम की ज़ात को अल्लाह की ज़ात ने रहमतुलिल आलमीन यानी वमार सलना का इल्ला रहमतुलिल आलमीन बना के भेजा और ये बताया कि मैं रहमत हूँ तमाम आलमों के लिए, कभी भी सिर्फ ये नहीं कि किसी एक मुसलमान पर, किसी उस बंदे पर जिसने सिर्फ मेरा कलमा पड़ा, नो नेवर, तमाम रहमतों में आपके पास मुख्तलिफ मसालिक भी आते हैं, मजाहब भी आते हैं और मुख्तलिफ लोग भी आते हैं, और जब ये सारी चीजें आपके पास रहती हैं तो फिर आपकी ज़ात इस चीज़ में इन्वॉल्व होती है, आपको बताती है कि अब तुम ऊपर वाले के रास्ते पे चल पड़े हो। लेकिन ये खूबसूरती बातें हमारे साथ चलती रहेंगी, सामीन मेरे साथ जुड़े रहेगा, अभी हमारे दरमियान हायल होने जा रही कमर्शियल ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक के उस पार रहेगी आपसे मुलाकात। सो जैसे कि मैं अक्सर कहता हूँ कि स्टे ट्यून्ड विद 97.1 एफएम एंड डैब एंड योर होस्ट नासिर खान विल बी राइट।
1: इट्स कमर्शियल टाइम।
2: Hello Nottingham, we urgently appeal for a stem cell donation for a dedicated local doctor and a young father who is fighting for his survival. He urgently needs a life-saving stem cell transplant. Tragically, his South Asian match hasn't been found yet. We are appealing to entire South Asian community to please come forward and help this father. We are hosting a donor drive at the ICCA Center on Hucknall Road on Wednesday, 27th May, between 6 p.m. and 7:30 p.m. All it takes is a simple 2-minute cheek swab. Please come forward and I hope to see many of you on Wednesday, 27th May. Thank you.
3: What happened? You look very happy.
4: I have some fantastic news. My wife's got her visa.
3: Congratulations. That was very quick.
4: I was very lucky. I used the local visa experts.
3: Who helped you with the application?
4: AMH solicitors. They were brilliant. Friendly, fast and very responsive. And best of all, they deal with all sorts of visas, extensions, indefinite leave to remain and citizenship applications.
3: Where is AMH solicitors based?
4: Nottingham Road, New Basford, Nottingham.
3: Brilliant. I will contact them to help my family's visa.
4: Sure. Their number is 0115-671-3677 and they are in Pure Gym building. So, parking is available and they also offer free initial consultation.
5: AMH Solicitors, immigration lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baisford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115 671 3677.

97.1 FM. Back to back hip hop music.

वेलकम बैक डियर लिसनर्स एंड प्यारे से फॉलोअर्स ऑफ रेडियो 97.1 एफएम। बिल्कुल जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और मेरा और आपका साथ मजीद आध घंटे का रह चुका है। जुमातुल मुबारक का बाबरकत दिन भी है और इस सुबह के बाबरकत मौसम में, जैसा कि पहले एक तमहीद बांधी गया, अगर हम अपने कारोबार को फ़रोग देना चाहते हैं, हम अपने कारोबार को समझना चाहते हैं, अपने कारोबार को लेकर आगे चलना चाहते हैं, तो सच्चाई हमारे पास एक बेहतरीन ऑप्शन है। लेकिन सामिन, आपको बताते चलें कि कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे भी आते हैं जो सच्चाई को सामने देखते हुए भी सच्चाई को मानने से इनकार करते हैं। लेकिन आजकल का जो बिजनेस फिनोमेना है वो क्या है, वो ये लोग समझते हैं कि जनाब, जितना आप किसी को चूना लगा लें या जितना आप किसी को थोड़ा बहुत राइट लेफ्ट कर दें तो आप एक कामयाब बिजनेसमैन हैं। सुना जाता है, क्योंकि कहते हैं कि इन्वायरमेंट बनता है। लेकिन हम जिस माशरे में रहते हैं, सिविलाइज्ड कौम में हम रहते हैं, हम अपने टैक्स पे करते हैं और अपने टैक्स पेयर्स के साथ साथ हम कोशिश करते हैं कि हम सिविलाइजेशन को भी अपने साथ लेके चलें। स्पेशली जो हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी है, नॉटिंघम शहर की बड़ी खूबसूरत सी कम्युनिटी, इस चीज़ का ख्याल भी रखती है। कितने बिजनेसमैन ऐसे हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, आप लोग हैं, तीन तीन शिफ्ट्स में हम लोग काम करते हैं सिर्फ इसलिए कि हम इस मुल्क को कौम का वो हक अदा कर सकें जो हम यहाँ के अपने पीछे वालों के लिए करना चाहते हैं। और जब ये लोग हमें इस सपोर्ट पर लेके आते हैं या सिचुएशन में हमें उतारते हैं, तो फिर हमारा काम भी बनता है कि हम सच्चाई के साथ उन ताकतों के साथ अपने आप को लेके कारोबार करें, अपनी ज़िंदगी करें। अगर आप जॉब भी करें तो अपनी इतनी इन्हमाक के साथ जॉब करें जिसमें टरखाने वाला कोई अमल ना हो। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर लोग आपको अच्छी नीयतों से भी, अच्छे नामों से भी और अच्छी परहेजगारी के रेफरेंस से भी याद करेंगे। लेकिन आपको एक और चीज़ बताते चलें कि अगर आप अपने आप को मज़ीद मोटिवेट करना चाहते हैं तो फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप छोटा सा काम, अगर हम जुमातुल मुबारक के बाबरकत दिन को अपने वीक के स्टार्ट में लेके आएँ, या जिस तरह आज इवनिंग में वीकेंड स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद हम भूल जाएंगे कि हमने पूरा वीक क्या किया। लेकिन ऊपर वाला जो बैठा हुआ है ना, अल्लाह की ज़ात इतनी ज़बरदस्त और कारगर ज़ात है कि जब वो आपको ये बताती है कि तू मेरा बंदा है, तूने लौट के मेरी तरफ आना है, तो फिर जब सच्चाई आपके कारोबार में हो, सच्चाई आपकी नीयत में हो, सच्चाई आपके किरदार में हो, तो फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलती है, फिर आपका रूप बात करता है, फिर कोई आपकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकता, कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता कि भाई तुमने गलत चीज़ बेची है। तो जनाब, ये वर्डिंग आपको पता है मैं यूज़ इसलिए करता हूँ कि तंजो मजाक भी हमारा साथ साथ रहे, इस्लाहतन बात भी होती रहे और आपके कानों में जो मेरी आवाज़ पड़ रही है, मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ उन अल्फाज का मैं जिम्मेदार हूँ, मेरी जुबान से क्या इरशाद हुआ ये बिल्कुल जनाब मेरे इख्तियार में, लेकिन आपके कानों ने क्या सुना इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। हर बंदे की अपनी अप्रोच होती है, मेंटालिटी अपनी होती है, लेकिन उस मेंटालिटी को एक पॉजिटिव अप्रोच देना बेसिकली ये राह रास्त है, यही वो एहतना सिरात मुस्तकीम है जिसका अल्लाह ताला की ज़ात ने ये कहा है कि अगर तुम मेरे सिरात मुस्तकीम पे हो, जिस सिरात मुस्तकीम को मैंने दिया है, तो फिर हम अल्लाह ताला की ज़ात हमें कभी नाराश नहीं करेगी, कभी भी ऊपर वाला हमें नाराश नहीं करेगा। और जब ऊपर वाला नाराश नहीं करेगा तो फिर पाँच टाइम दिन में जब आप ये कहते हैं ना कि या अल्लाह हमें उस सीधे रास्ते पर चला जिसका तूने वादा किया है, या वो रास्ता जो रास्ता सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए है, लेकिन ऐसा कोई रास्ता भी जिस पे तूने अपने बंदों पे गज़ब किया, उस रास्ते पे हमें मत चला, क्योंकि हम उस रास्ते पे चलने के काबिल नहीं हैं, हमारी औकात नहीं है। अल्लाह की ज़ात ने हमें अशरफ मखलूकात ज़रूर बनाया है, अपना नायब बनाया है, लेकिन नायब बनाने के साथ साथ हमें अक्ल दी है, तदब्बुर करने की ताकत दी है। अल्लाह की ज़ात गालिबन 11वें पारे में इरशाद भी फरमाती कि तदब्बुर करो, सोचो कि अगर मैंने कोई चीज़ बनाई है तो क्यों बनाई है, अगर मैंने उस चीज़ को आप लोगों के लिए मुख्तस किया है, पहाड़ बनाए हैं, जंगल बनाए हैं, दरख्त में बियाबान, पानी, समुंदर, खुश्की, बहुत ऐसी चीज़ें, उसके बाद आपकी फैमिली, आपके रिलेशन, जैसा कि मैंने पहले कहा कि आपके अजीज़ वकारब जितने भी लोग हैं, जितनी भी सिचुएशंस हैं, ये सारे मामलात आपके लिए सिर्फ इसलिए होते हैं कि आप अपने आप को मज़ीद फोकस करके उन राहों पे चला सकें जिन राहों का अल्लाह की ज़ात ने सिर्फ कामयाबी के साथ, तसलसल के साथ जोड़ा है। और जब जुड़ जाती हैं तो फिर अल्लाह की ज़ात आपको ये बताती है कि आपने हमेशा कोशिश करनी है, हमेशा आपने अपने आप को फोकस रखना है सच्चाई के लिए। और जब अपने कारोबार में, अपने काम में, अपनी शिफ्टों में, दिन रात में आप सच्चाई का सहारा लेंगे और फिर जब आप सच्चाई को फोकस करेंगे तो फिर कोई भी जनाब, जैसा कि मैंने पहले कहा ना कि माई का लाल नहीं है कि आपको पिछाड़ सके या आप अपने राह रास्ते से हट सके। हाँ, हर्डल ज़िंदगी में आती हैं, उनको फेस करना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप सच्चे हैं, अगर आप राह रास्ते हैं, अगर आप हक में हैं, तो फिर आपको कोई भी कुछ नहीं कह सकता। अपने कारोबार को भी इसी तरह आगे लेके चलिए, अपनी मोटिवेशंस को भी, और आज की जो आपकी
मोटिव्स हैं उनको भी ऐसा ही लेके चलें। जब इंसान ये सारी चीज़ें समझता है, सोचता है, बताता है, तो इंसान को एहसास रहता है कि अब मैंने जो आगे करना है उसके लिए मेरे पास क्या लायमल है। कुछ लोग आपसे बिछड़ भी जाते हैं, आप सच्चे होते हैं, कुछ लोग आपके पास भी आ जाते हैं, शायद आप मुखलिस होते हैं, और कुछ लोग शक व शुबहात की बिना पर आपके साथ काफ़ी सारी दूरियां भी इख्तियार करेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, ऊपर वाले पे हर चीज़ छोड़ दीजिए, और जब आप ऊपर वाले पे हर चीज़ छोड़ देते हैं ना, फिर ऊपर वाला कहता है कि अब लगाम मैंने पकड़ ली है, कोई इशू नहीं है। अगले के दिल में जो भी हल्की सी भी नेगेटिविटी होगी या कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपको या उस बंदे को आपके कारोबार में या आपकी ज़ात से रिलेशंस में या नुकसान में लेके आना चाहती है, तो फिर ऊपर वाले की ज़ात खुद आपको सेव करेगी। और फिर जब आप अपने राह रास्त रस्ते पे यानी सिरातुल मुस्तकीम पे चलते रहेंगे, अपने कारोबार को लेके चलेंगे, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरशाद है जो मैंने कोट किया शुरू में, वो कोट ऑफ द डे हमारे पास एक बिल्कुल जनाब ना कहते हैं कि सुरख रोशनी की तरह होगी या गोल्डन रोशनी की तरह होगी, कि जब अफलाक के उस पार सुबह के टाइम कुछ सूरज की किरणें निकलती हैं, तो वह आपके दिलो दिमाग को मुनव्वर करती हुई कुछ सुनहरे रंग आपके अंदर छोड़ती हैं, जिसको हम सुबह खैर यानी गुड मॉर्निंग कहते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 एफएम। एक छोटा सा ट्रैक में प्ले करूंगा, लेकिन ट्रैक आपको पता है जुमातुल मुबारक का दिन जो मैं प्ले करता हूँ, तुम एक गोरख धंधा हो। बहुत ही कम समय रह गया है, बातें भी करनी हैं, लेकिन आप लोग मेरे साथ हैं, मज़ीद 10 से 15 मिनट आप वो ट्रैक सुनेंगे, लेकिन जब वो ट्रैक खामोश होगा तो उसके उस पार में नहीं रहूँगा। आपका मेज़बान नासिर खान चाहेगा आपसे इजाज़त। सुनिए खूबसूरत ट्रैक, ट्रैक उस पार रहेगी आपसे मुलाकात मेरी नहीं, हमारे नेक्स्ट आरजे की। हमारी बाकी ट्रांसमिशन के बारे में जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट विच इज़ radioflower.co.uk। अलावा हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, पॉडकास्ट सेशन के देखने के लिए आप पॉडकास्ट पर विजिट करेंगे, radioflower.co.uk, ऑफिशियल टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, यूट्यूब, फेसबुक, जिन सब पे हम अवेलेबल हैं। ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे आप हमें फॉलो कीजिए, मैसेजेस कीजिए और एहसास दिलाइए अपने होने का।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG24LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM। आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।

अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आप सभी की होस्ट ज़ैनब फातिमा और आप सबको वेलकम करती हूं द टीवा डायलॉग जो के ऑन एयर होता है सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 FM पे। जी तो लिसनर, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रेडियो फजा वो वाहिद प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, साथ ही साथ एंटरटेनमेंट का डोज। तो जी लिसनर्स, ये इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट के पैटर्न को लेके चलेंगे हम और आप अब से लेके ठीक 2 घंटे तक, यानी ठीक 10 बजे से लेके ठीक 12 बजे तक हम और आप रहेंगे साथ साथ, मिलके बनाएंगे आपके आज के इस दिन को और भी ज्यादा खूबसूरत और भी ज्यादा मेमोरेबल। तो जी लिसनर्स, इंतजार किस बात का है, अभी उठाइए फोन 01157100971। ये है हमारे स्टूडियो का लाइव नंबर, यानी मेरा और आपका रابطे का नंबर। इस नंबर के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ना सिर्फ आप मुझसे रابطा कर सकते हैं बल्कि अपनी कीमती राय भी शेयर कर सकते हैं कि आप इस पर क्या सोच रहे हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है और आज के दिन के हवाले से आपकी क्या मसरूफियत है, क्या गोल्स हैं, क्या प्लान्स हैं, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपको बॉदर कर रही हो। सो बिल्कुल भी उस चीज़ को नहीं लेना और आपने भिला झिझक मुझसे वो तमाम चीज़ें शेयर करनी हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी सभी क्वेरीज को दूर करूं और अगर आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में या फिर आपके आसपास कम्युनिटी में कोई भी सिम्टम्स होता है ना कोई टेंशन स्ट्रेस चल रहा होता है, सो आपने उसको बिल्कुल भी सर पे सवार नहीं करना और मुझसे लाजमी शेयर करना है। पूरी कोशिश करूंगी कि आपको एक अच्छी पीस ऑफ एडवाइस दूँ। तो जी लिसनर्स, इंतजार किस बात का है, आप अभी इस नंबर को सेव कर लीजिए और इस खूबसूरत सफर का हिस्सा बनिए। हिस्सा किस तरह से बनेंगे वो तो मैंने आपको अभी पता ही दिया है। साथ ही साथ अगर आपकी कोई फरमाइश हो या आप चाहते हो कि आपका कोई भी फेवरेट टॉपिक हम अपने शो में शामिल करें या इसके अलावा कोई ऐसी बात करें जो आप सुनना चाहते हो, या आप कोई खूबसूरत सा साउंड ट्रैक या फिर कोई खूबसूरत सा कलाम, कवाली अपने किसी प्यारे चाहने वाले को डेडिकेट करना चाहते हो, तो उन सभी चीज़ों के लिए भी 01157100971 है हमारा नंबर, यानी कि मेरा और आपका रابطे का नंबर। तो जी लिसनर्स, अब जरा आगे बढ़ते हैं और आपसे शेयर करती हूँ कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। सो radiofaza.com.uk है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, यानी इस वेबसाइट के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। ना सिर्फ आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमें ट्यून कर सकते हैं, अपने खूबसूरत से दिन को मजीद खूबसूरत बना सकते हैं किसके संग, सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 FM के संग। साथ ही साथ बताती चलती हूँ कि रेडियो फजा 97.1 FM है हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन, यानी आप इस एप्लीकेशन को इजीली अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, आपको तरीका बता देती हूँ कि किस तरह से आप हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका है, आपको करना कुछ यूँ है कि आपको जाना है एप्पल स्टोर या फिर गूगल स्टोर पर, वहाँ जाके आपको सर्च करना है रेडियो फजा 97.1 FM। और विद इन अ फ्यू सेकेंड्स एक पर्पल कलर का स्क्रीन आइकन आप सभी की स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे, यही है हमारी एप्लीकेशन। सो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें, बने रहें और आप ये जान सकें कि आपका फेवरेट आरजे कौन से दिन किस शो में आ रहा है। ये तो बात हो गई उन सभी लिसनर्स की जो इस वक्त घरों में मौजूद हैं, अभी तक तकरीबन उठ तो चुके होंगे क्योंकि यूके में सुबह बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन आप अभी घर में हैं, थोड़ी सी कश्मकश का शिकार हैं, ये सोच रहे हैं कि उठा जाए बिस्तर से या फिर नहीं, और माइंड में बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं कि अच्छा आज किस पूरे दिन में क्या किया जाए, क्या काम ऐसे हैं जो कब से पेंडिंग पड़े हुए हैं और हमें उन कामों को कंप्लीट करने की जरूरत है। सो ये मैं बात कर रही हूँ उन सभी लिसनर्स के लिए
जो कि अभी हमें घर से सुन रहे हैं। अब जरा बात करते हैं उन सभी लिसनर्स की जो कि इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं या फिर अपनी डेस्टिनेशन के करीब करीब पहुंच चुके हैं, ऑफिस के रास्ते में हैं या फिर घर से ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। जी हाँ, तो लिसनर्स, आप अपने इस सफर को, इस जर्नी को मजीद खूबसूरत बना सकते हैं। किस तरह से बना सकते हैं? आप हमें फजा डैब के थ्रू ट्यून कर सकते हैं। सो दी लिसनर्स, ये थे वो सभी तरीके जिनसे आप हमसे और हम आपसे जुड़ सकते हैं। सो मैंने सभी तरीके शेयर कर दिए हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएंगे। सो जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे और अभी तक अपने दिन का आगाज कर चुके होंगे। लेकिन जस्ट इन केस अगर आपने अभी तक अपने दिन का आगाज नहीं किया और आप उन सभी कश्मकश का शिकार हैं, सो डोंट वरी, आई एम हियर विद यू बिकॉज मैं इसीलिए आई हूँ क्योंकि मैं बनाऊंगी आपकी सुबह को और भी ज्यादा खूबसूरत और भी ज्यादा मेमोरेबल। सो आइए मिलकर करते हैं अपने इस खूबसूरत से दिन का, इस खूबसूरत से फ्राइडे का आगाज। और हमेशा की तरह यही कहूंगी कि एक अच्छे दिन का आगाज किस चीज से होता है, आप सभी को तो अब तक मालूम हो ही चुका होगा, ऑब्वियसली एक अच्छे ब्रेकफास्ट से। क्यों? क्योंकि ब्रेकफास्ट क्या करता है? ब्रेकफास्ट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ना सिर्फ ब्रेकफास्ट हमें एनर्जी देता है बल्कि एक अच्छा मील इंसान की बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और जितने भी विटामिन्स होते हैं वो बॉडी में कंज्यूम होते हैं। इंसान एक्टिव फील करता है और फिर इंसान क्या करता है, पूरे दिन की चीज़ों को, मामलात को, कामों को हैंडल करता है। सो हमेशा की तरह मैं अपने सभी लिसनर से यही कहूंगी कि एक दिन का आगाज करें एक अच्छे हेल्दी मील के साथ, ताकि आपका आने वाला पूरा दिन इसी तरह से खूबसूरत गुजरे और आप थ्रू आउट द होल डे एक्टिव रहें। तो जी लिसनर, जिस तरह से मैं ये कहती हूँ, साथ ही साथ अब बात करते हैं, ये तो हमने बात की बॉडी के बारे में, अब से बात करते हैं अपनी सोल के बारे में। सो किस तरह से हम अपनी सोल को एक्टिव कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं एक अच्छे से खूबसूरत से ट्रैक से। तो जी, जैसा कि आज है जुमातुल मुबारक का नेक पाक बाबरकत दिन, यानी कि ऐसा दिन जिससे तमाम तर मुस्लिम कम्युनिटी में हफ्ते में सबसे अफजल दिन करार दिया गया है। सो आज के इनकी मुनासिबत से आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा कलाम जिसे नफक यानी कि नुसरत फतेह अली खान साहब ने अपनी खूबसूरत सी आवाज़ में गुनगुनाया है। सो आइए सभी लिसनर्स मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा कलाम और इसी तरह से शो का आगाज़ करते हैं। होंगी और भी बहुत सारी गपशप, बहुत सारी बातें, सो आपने बिल्कुल भी कहीं नहीं जाना बल्कि हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहना है। स्टे ट्यून्ड विद अस। और अभी बारी आई है इस खूबसूरत से कलाम की, मिलते हैं कलाम के उस पर। तब तक के लिए रेडियो फजा 97.1 FM के साथ जुड़े रहिए।

बट ट्रस्ट मी, समटाइम्स हम ऐसा सोचते हैं कि और ना उम्मीद हो जाते हैं, लेकिन अगर कभी आपको लगे कि आप रास्ते से भटक रहे हैं या थोड़ा सा इधर उधर हो रहे हैं, सो आपको चाहिए कि आप 2 मिनट का ब्रेक लें, एक ठंडी सांस लें, और ठंडी सांस लेने के बाद वापस से अपने उस ट्रैक की तरफ रवा दवा हो, यानी कि आप ट्रैक से थोड़ा सा इधर उधर हुए हो लेकिन आप ट्रैक से उतरे नहीं हो। तो मोमिन की पहचान भी यही है कि मोमिन गलतियां करता है, और गलतियां किए बिना तो कोई इंसान इंसान कहलाता ही नहीं है, इंसान तो फिर हताओं का पुत्ता है। सो अगर आपको भी कभी लगे कि आप अपनी ज़िंदगी के मेन बुनियादी मकसद, जो कि आपको मुझे हम सभी को मालूम है कि अपने गॉड की प्रे करना, ढेर सारी इबादत करना और गॉड को सुबह दोपहर दिन रात याद करना, सो अगर कभी आपको भी ऐसा लगे कि आप अपने मकसद से थोड़ा सा इधर उधर हो चुके हो या आप अपने मकसद से भटक चुके हो, तो वहीं खुद को एक पॉज दो, एक लंबी सांस लो, और लंबी सांस लेने के बाद वापस से अपने ट्रैक की तरफ रवाना हो जाओ। क्यों? क्योंकि बाज़ूकात इंसान बस यही सोच पे पड़ जाता है कि अच्छा मुझसे तो बहुत सारी गलतियां हो गई हैं, मैंने बहुत सारे बुरे बुरे काम किए हैं, अब तो वापसी का कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन वापसी का रास्ता हमेशा खुला होता है और हमेशा खुला रहता है। ये बस हम इंसानों की थिंकिंग होती है कि हम सोचते हैं कि अब हमारा वापसी का रास्ता नहीं और गॉड हमें माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन गॉड बहुत ही ज़्यादा रहम दिल हैं, शफीक हैं, मेहरबान हैं, और वो तो इस चीज़ का वेट करते हैं कि इंसान अपनी तमाम तर गलतियों का एहसास करे, वापस मेरे पास आए और एक बार कहे। और जब कोई भी इंसान, ट्रस्ट मी, अपना बॉन्ड अल्लाह ताला के साथ स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है, सो वो एक कदम उनकी जानिब बढ़ाता है तो वो 10 कदम उनकी जानिब बढ़ाते हैं। सो आज जैसा कि जुमतुल मुबारक का इतना खूबसूरत सा प्यारा सा दिन है, सो आज के दिन के हवाले से बस यही कहूँगी कि अगर मंजिल से भटक गए हो तो घबराने की बात नहीं। क्यों? क्योंकि हमेशा वही लोग मंजिल से भटकते हैं जिन्हें मंजिल पर दोबारा वापस आना होता है और अपने कदम जमाने होते हैं। तो लिसनर्स, इस खूबसूरत सी प्यारी सी बात के साथ अभी शो में भी वक्त हुआ है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। आई नो बहुत मजा आ रहा था आप सभी के साथ गुफ्तगू करते हुए, गपशप का सिलसिला जारी रहेगा और भी बहुत सारी मजे की बातें करेंगे, कुछ आपकी बातें सुनी जाएंगी और कुछ आपको अपनी बातें सुनाई जाएंगी, लेकिन फिलहाल के लिए अभी कमर्शियल ब्रेक की जाने बढ़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कमर्शियल ब्रेक ही वो वाहिद रास्ता होते हैं जो हमें आपसे और आपको हमसे मिलाते हैं। सो कमर्शियल ब्रेक इज इम्पोर्टेंट, तो अब जरा आगे बढ़ते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब। आप सभी से मुलाकात होगी कमर्शियल ब्रेक के उस पार, तब तक के लिए हमारे साथ यानी रेडियो फजा 97.1 FM एंड डैब के संग जुड़े रहें, बंदे रहें। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-210-7932।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are staying. We are playing
12: Fazan 97.1 FM.
13: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
14: 97.1 FM.
15: 97.1 आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
16: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब। यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब। यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
15: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
17: अगर तुम

वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से मैं हूँ आप सभी की होस्ट ज़ैनब फ़ातिमा और आप सभी को खुशामदीद करती हूँ द टीवा डायलॉग जो कि ऑन एयर होता है सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 FM पे। तो लिसनर्स, ये शॉर्ट सा सिंपल सा इंट्रोडक्शन उन सभी लिसनर्स के लिए जिन्होंने हमें लेट ट्यून किया है। होता है ना कि समटाइम्स इंसान कोई काम कर रहा होता है या इधर उधर होता है या फिर नींद से आंखें प्रॉपरली खुली नहीं होती। सो आप सभी लिसनर्स को मैं तहे दिल से खुशामदीद कहती हूँ जो इस वक्त मुझे दुनिया के किसी भी कोने से सुन रहे हैं। आप सभी के लिए यही कि रेडियो फजा 97.1 FM को इसी तरह से सुनते रहिए। जैसा कि आप सभी लिसनर्स को मालूम है कि हमारे हर दिन की आगाज़, हमारे हर दिन की शुरुआत और हमारे हर शो की शुरुआत होती है एक खूबसूरत सी, प्यारी सी, मोटिवेशनल सी बात से। सो जैसा कि है आज जुमातुल मुबारक, सो आज के हवाले से भी आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी ही पॉजिटिव बात जो कि बना देगी आपके इस मूड को और भी ज़्यादा अच्छा। साथ ही साथ कि ये बात जो है वो आपके दिल पे ज़रूर असर करेगी। अगर से बात बहुत सिंपल सी होगी लेकिन उसका मीनिंग, उसका मफहूम उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा।

सो डियर लिसनर्स, हमारा आज का खूबसूरत सा प्यारा सा मोटिवेशनल सा कोट है कि बड़ा बनने के लिए बड़े आगाज की जरूरत नहीं होती, अगरचे जरूरत होती है तो सिर्फ शुरुआत की। तो जी लिसनर्स, ये था हमारा आज का प्यारा सा खूबसूरत सा कोट। आई होप लगता है कि आप सभी को ये कोट थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन इसमें कोई भी मुश्किल की बात नहीं है। सो सिंपली हमारे आज का मोटिवेशनल कोट ये कहता है कि अगर कोई भी इंसान चाहता है कि वो आसमान की बुलंदियों को छुए, उसके कदम पहाड़ों से जा मिलें और वो ज़िंदगी में वो सब कुछ हासिल कर सके जो उसकी ख्वाहिश है, इंसान इस दुनिया में आता है, साथ ही साथ इस दुनिया में आते साथ ही हर एक इंसान की कोई ना कोई ख्वाहिशात होती हैं, कोई जस्तजू होती है, कोई दिल की पसंद होती है। सो हमारा पूरी थ्रू आउट द होल लाइफ हमारा पूरा मकसद यही होता है कि हम अपनी खुशियों को हासिल कर सकें और अपनी तमाम तर ख्वाहिशात को पूरा कर सकें। सो हमारा आज का कोट यही कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में कामयाब इंसान बने, कामयाबी आपके कदम चूमे और आप वो तमाम तर चीज़ें हासिल कर सके जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हैं या फिर जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सो उसके लिए आपके ख्याल में किस चीज़ की ज़रूरत होती है? अब यहाँ बहुत सारे लिसनर्स मुझे कहेंगे कि ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी की, मेहनत की, हाँ उन दोनों चीज़ों की भी ज़रूरत होती है, लेकिन सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत होती है एक इंसान को एक कामयाब सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए, वो होती है इंसान को शुरुआत की। अच्छा, बाज़ूकात शुरुआत करना ही एक ऐसा स्टेप होता है जो ऐसा हमें बहुत मुश्किल लगता है। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अपना एक माइंडसेट बनाना, ये सोचना कि आया मैं ये काम करूँ ना करूँ, क्योंकि हर काम के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जहाँ रिस्क होता है वहीं कामयाबी होती है। तो होता है ना कि जो इस तरह का काम हो जिसमें आपको रिस्क का सामना करना पड़े, हम इंसान आप में, मैं अपनी बात भी कर रही हूँ आप सभी के साथ, आप सभी लिसनर्स के साथ, क्योंकि हम आप बिल्कुल एक जैसे हैं, क्योंकि वी आर ह्यूमंस। सो जब भी कभी हम कोई नए काम का आगाज करें तो बहुत मुश्किल लगता है, लगता है कि इंसान वो काम कभी भी नहीं कर सकेगा, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बस कुछ स्टेप्स होते हैं जो एक इंसान को मुश्किल लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता चला जाता है तो ज़िंदगी आसान से आसान होती चली जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपको थोड़ी दुश्वारी होगी, एक हफ्ता दो हफ्ते मुश्किल लगेंगे, लेकिन जब आप एक मरतबा शुरुआत कर लेंगे तो फिर खुद ब खुद चीज़ें आसान होती चली जाएंगी और रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। तो जी लिसनर्स, आज के इस खूबसूरत से कोट से आपने, मैंने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि अगर हम जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सो हम क्या करेंगे, आज ही से शुरुआत करेंगे। अगर हम कल को देखेंगे, परसों को, सो वी वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। सो हमने क्या करना है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना और जिंदगी को खूबसूरत कामयाब बनाना है और शुरुआत करनी है। वेल लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये खूबसूरत सा कोट अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे या कुछ भी आप चाहते हैं, कोई ऐसा टॉपिक जिसके हवाले से मैं बातचीत करूं, सो मुझे लाजमी बताया करें 01157100971, जो कि है मेरा और आपका राबते का नंबर। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि द डीवा डायलॉग में हम सुने सभी लिसनर्स की, अपनी डीवास की। सो आपके माइंड में जो कुछ चल रहा है, अभी क्या सोच रहे हैं या इसके बाद क्या सोचने वाले हैं, मुझसे लाजमी शेयर किया करें। सो जहां हम बात कर रहे थे कि आपकी रिक्वेस्ट को यहीं फुलफिल किया जाता है, सो वहीं हमें आई है एक खूबसूरत सी प्यारी सी रिक्वेस्ट, यानी कि हमारे एक लिसनर का कहना है कि उनका पसंदीदा कलाम शो में शामिल किया जाए। सो जैसे कि आपकी फेवरेट आरजे ज़ैनब पूरी कोशिश करती है कि मैं आपकी सभी रिक्वेस्ट को फुलफिल करूँ, सो ज़रूर फुलफिल करूँगी और आपकी इस खूबसूरत सी फरमाइश पर शो में शामिल करते हैं खूबसूरत सा कलाम। जी तो लिसनर्स, आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत कलाम। कलाम के उस पार होती है आपसे मुलाकात। स्टे ट्यून विद अस।

वेल लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये खूबसूरत सा कलाम जिसे आपदा परवीन साहिबा ने अपनी खूबसूरत सी जाज़ब नज़र आवाज़ में गुनगुनाया है अच्छा लगा होगा। और इस तरह की मज़ीद अगर आपकी कोई भी रिक्वेस्ट है या कुछ भी जो आप चाहते हैं कि हम शो में शामिल करें सो लाजमी बताया करें। आपका मेरा रबते का नंबर है 0115710971। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप अपना फीडबैक देते हैं और डिफरेंट चीज़ों के बारे में डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं। ऐसे अच्छा लगता है कि आपको डिफरेंट तरह का नॉलेज मिलता है। समटाइम्स क्या होता है कि एक इंसान के पास एक चीज़ का नॉलेज होता है लेकिन जब वो तीन चार और मज़ीद लोगों से मिलता है, उनसे कम्युनिकेट करता है, बातचीत करता है, सो उन्हीं बातों में उस इंसान को दूसरे तमाम तरह इंसानों का नॉलेज भी मिलता है। और वैसे भी कहा जाता है कि हर एक चीज़ को, हर एक बात को डिफरेंट लोगों के देखने का तरीकाकार थोड़ा डिफरेंट होता है। सो अगर आप ग्रुप स्टडी करें, जैसे कि तमाम तरह स्टूडेंट्स से ये मैं कह रही हूँ कि अगर आप मिलकर ग्रुप स्टडीज़ करें सो आप ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं इंस्टेड कि आप सेपरेटली अकेले पढ़े क्यों। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि अकेले आप ज़्यादा अच्छा फोकस कर सकते हो, इंस्टेड जब आप ग्रुप में होते हो, आपके फेलोज आपके साथ होते हैं या आपके सभी दोस्त आप सभी के साथ होते हैं, सो हमारा ध्यान उनसे बातों की तरफ लग जाता है और हमारा फोकस डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन इस मामले में मैं ये कहूँगी कि मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ, मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ ग्रुप स्टडी। अच्छा, ग्रुप स्टडी से क्या होता है कि जब मैं और मेरे फ्रेंड्स हम लोग मिलकर पढ़ते हैं सो काम डिवाइड हो जाता है, एक एक चीज़ के नोट्स बना लेता है दूसरा दूसरे के, और हम जब आपस में डिस्कशन करते हैं सो हमें एक चीज़ के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज भी मिलते हैं। सो ये एक बेटर तरीका है अच्छे मार्क्स गेन करने का और आगे बढ़ने का। सो दे लिसनर्स, अभी शो में वक्त हुआ है सभी डीवास के फेवरेट सेगमेंट का, यानी कि द स्पाइस किचन का। सो हमेशा की तरह, हर नए दिन की तरह, आज भी आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मैं मज़े मज़े की रेसिपीज, क्योंकि आई नो बहुत सारी फीमेल्स का यही एक मसला होता है कि डेली बेसिस पर हमें क्या चीज़ बनाई जाए, क्योंकि कुकिंग इट्सेल्फ इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। हर दिन ये चीज़ डिसाइड करना कि अच्छा आज क्या खाने में बनाया जाए। सो अगर आप सभी भी यही चीज़ सोच रही थी या अभी भी सोच रही हैं सो टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि आज भी मैं लेकर आई हूँ ऐसी ही मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपीज जो कि इंस्टेंटली बन जाएंगी और आपको लगेंगी बहुत अच्छी। सो आप एक काम करें, जल्दी से जाएं, अगर कोई भी आप काम कर रही हैं एक से दो मिनट का पॉज लें और उस काम को कर दें फौरी तौर पर स्किप, क्योंकि मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसी मज़ेदार रेसिपी जो कि अगर आप मिस कर देंगे सो आप बाद में रिग्रेट करेंगे। सो सबसे पहले एक नोटबुक, डायरी और एक पेंसिल रेडी कर लें ताकि आप सभी इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें और आपसे कुछ भी मिस ना हो।

जी तो लिसनर्स, मेरा ख्याल है कि अभी तक आप सभी ने अपनी नोटबुक रेडी कर ली होगी। सो अब शुरू करते हैं आज की द स्पाइस किचन की फर्स्ट रेसिपी। अच्छा तो लिसनर्स, आज हम बनाएंगे कुछ डिफरेंट तरह की रेसिपीज, क्योंकि मोस्टली डेली बेसिस पे मैं बनाती हूँ चटपटी सी तीखे खाने। और बहुत सारे हमारे आसपास से, हमारी कम्युनिटी से ऐसे लोग बिलोंग करते हैं जो कि ज़रा इस तरह का स्पाइसी फूड, स्पेशली चिकन, मीट और इस तरह की चीज़ें खाना प्रेफर नहीं करते। वो लोग प्रेफर करते हैं कि खाना हेल्दी होना चाहिए, प्लस डाइट कॉन्शियस होते हैं, सो ये भी सोचते हैं कि कम ऑयल में खाना बना हो ताकि आपको पूरे इंग्रेडिएंट्स मिले लेकिन आपका वेट भी गेन ना हो। सो आज मैं आपके लिए लाई हूँ थोड़ी सी डिफरेंट, थोड़ी सी सिंपल रेसिपी। सो आज हम बनाएंगे मज़ेदार कद्दू की सब्ज़ी। बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं जानते कि कद्दू एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी सब्ज़ी है। इसमें हमें फाइबर मिलता है, प्रोटीन्स मिलते हैं, विटामिन्स होते हैं, साथ ही साथ जैसा कि अब जो मौसम चल रहा है जून में बहुत ज़्यादा गर्मी इस वक्त पीक में चल रही है और हीट वेव स्पीड आजकल बहुत ज़्यादा है। सो हमें ज़रूरत है ऐसे खानों की जो कि थोड़ा हमें रिफ़्रेश करे और उनकी तासीर थोड़ी ठंडी हो। सो इस हवाले से मैंने सोचा कि क्यों ना हम आज एक ऐसी वेजिटेबल बनाएं जो कि इट्सेल्फ बहुत ठंडी है और खाने में भी बहुत टेस्टी है अगर आप उसको मज़े से बनाएं। तो चलिए लिसनर्स, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की फर्स्ट रेसिपी। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है, क्योंकि अभी वक्त हुआ है हमारे शो में एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। आई नो कमर्शियल ब्रेक पे जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, क्योंकि जब आपकी कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी चल रही हो सो सडनली उसको थोड़ा सा ड्रॉप करना पड़ता है ड्यू टू कमर्शियल ब्रेक। बट कोई बात नहीं, क्योंकि कमर्शियल ब्रेक इज़ द पार्ट ऑफ आवर शो। सो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब और आप सभी से मुलाकात होगी कमर्शियल ब्रेक के उस पार। तब तक के लिए हमारे साथ यानी रेडियो फजा 97.1 FM के साथ जुड़े रहिए। और हाँ, जितने भी हमारी महिलाएं हैं जिन्होंने अभी तक अपनी नोटबुक या डायरी नहीं ढूंढी, आप भी इस कमर्शियल ब्रेक में अपनी नोटबुक या डायरी ढूंढ के रख लें, क्योंकि ब्रेक के बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की मजेदार सी चटपटी रेसिपी। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
2: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंगम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?
2: साली तुम मानी नहीं, कभी तो मानेगी।
1: पॉप फिल्मी गाने,

0: या फिर इंग्लिश और अरबिक। तो सुनते रहिए
1: फजान 97.1 FM।
0: हो गया ना कमाल।
2: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से मैं हूँ आप सभी की होस्ट ज़ैनब फातिमा और आप सभी को खुशामदीद करती हूँ द टीवा डायलॉग शो के ऑन एयर होता है सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 FM पे। तो लिसनर्स, जैसा कि आपको और मुझे साथ में हो चुके हैं एक घंटा करीब कंप्लीट इस एक घंटे की जर्नी में हमने काफ़ी सारी बातें की एंड आई होप कि आपको वो बातें अच्छी लगी होंगी, कुछ पॉजिटिव लगी होंगी, कुछ हो सकता है आपकी भी समझ ना आई हो। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी हो कि आपको कोई भी मेरी बात समझ ना आए या लगे थोड़ी सी भी मुश्किल, आप सिंपली मुझे बता सकते हैं। बताने का तरीका भी मैंने आपको बताया था, आइए एक बार फिर से बता देती हूँ। 01157100971 है मेरा और आपका रबते का नंबर, यानी इस नंबर के थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझसे शेयर कर सकते हैं फलां बात जो आपको बहुत अच्छी लगी और कोई ऐसी भी बात जो आपको नहीं अच्छी लगी, क्योंकि हम इंसान हैं, ऑब्वियसली कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई बात अच्छी नहीं भी लगती, लेकिन सभी शेयर करें मुझे बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही साथ लिसनर्स, ये बताइए कि आजकल जिस तरह से मौसम ने तब्दीली खाई है और इसी तब्दीली के चलते हुए, इसी तब्दीली को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हीट वेव्स इतनी ज़्यादा हो गई है, तो आपने क्या एहतियाती तदाबीर अप्लाई की हैं जिनसे आप बच सकते हैं इन हीट वेव से? वो भी मुझसे लाजमी शेयर करिएगा, क्योंकि आजकल जिस तरह से यूके में गर्मी पड़ रही है, मैं जब भी आजकल सुबह स्टूडियो आती हूँ, रास्ते में इतनी धूप, इतनी गर्मी होती है, इस धूप की वजह से, इस गर्मी की वजह से मैं इतनी ज़्यादा टैन हो गई हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहरहाल, अगर आपके पास भी कोई ऐसी अच्छी रेमेडी हो, वैसे तो मैं आप सभी के साथ रेमेडीज शेयर करती रहती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना आज ज़रा अपने लिसनर से भी पूछा जाए, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी रेमेडी जो कि स्किन की टैनिंग को ख़त्म कर सकती है, स्किन को ब्राइटन अप कर सकती है, लाजमी मुझसे शेयर करिएगा 01157100971 इस नंबर के थ्रू, क्योंकि आई स्वेयर टू गॉड इतनी गर्मी है कि क्या कहे बंदा। और फिर जाहिर सी बात है डेली बेसिस पर काम काज के लिए भी निकलना होता है, टैनिंग से बचना इम्पॉसिबल सा हो गया है, लेकिन कोई नहीं, कुछ ना कुछ करते हैं इसका भी। बहरहाल जी, तो लिसनर्स, अभी वक्त हुआ है शो में एक अदद खूबसूरत से प्यारे से कलाम को शामिल करने का, आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा कलाम। कलाम के उस पार होती है आप सभी से मुलाकात, तब तक के लिए हमारे साथ रहिए रेडियो फजा 97.1 FM के संग।

शामिल होगा कुकिंग ऑयल 2 टेबलस्पून और साथ ही साथ मस्टर्ड ऑयल भी। लेकिन ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं या फिर कुकिंग ऑयल। अब जरा आगे बढ़ते हैं अपने अगले इंग्रेडिएंट की जानिब। सो हमारा अगला इंग्रेडिएंट है मेथी दाना, जिसे हम शामिल करेंगे 1.5 टेबलस्पून। ज़ीरा शामिल होगा हमारी इस रेसिपी में 1.5 टेबलस्पून और हिंग हिंग बिल्कुल शामिल होगी 1 पिंच। बिल्कुल चुटकी सी, आपने इसकी क्वांटिटी को बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं करना, अदरवाइज आपका टेस्ट रेसिपी का सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है जो हमें दरकार है, हरी मिर्चें 2 बारीक कटी हुई और जिंजर गार्लिक 1 इंच का टुकड़ा, जिसे हम अच्छी तरह से बारीक कट करके रख लेंगे। अब जरा आते हैं स्पाइसेस की जानिब। इस रेसिपी में शामिल होगा हल्दी पाउडर, टर्मेरिक 1.5 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, आमचूर पाउडर 1 टेबलस्पून, यानी कि ड्राई मैंगो पाउडर। अच्छा, जो ड्राई मैंगो पाउडर है कि आपको कहीं से भी किसी भी जनरल स्टोर से इजीली मिल जाएगा, इसकी आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। अगला हमारा इंग्रेडिएंट है चीनी या फिर गुड़। ये ऑप्शनल है, आप चाहें आप चीनी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो आप गुड़ यूज़ कर सकते हैं 1 से 2 टेबलस्पून। गरम मसाला पाउडर 1.5 टेबलस्पून, हरा धनिया बिल्कुल बारीक कटा हुआ, और हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट, सॉरी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नमक हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायका। अब जरा आगे बढ़ते हैं प्रोसीजर की जानिब। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें अच्छी तरह से तेल को गर्म कर लेंगे, अगर सरसों का तेल है तो उसे अच्छे से धुआं निकालने तक गर्म करेंगे, फिर गैस धीमी करके थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब इसी में मेथी दाना, ज़ीरा और हिंग, ये तीनों इंग्रेडिएंट शामिल कर देंगे। जब मेथी का रंग हल्का सा बदल जाएगा तो अदरक और हरी मिर्चें इसके अंदर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसे सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए भून लेंगे। अब बारी आती है कढ़ाई में शामिल करने की हमारा मेन इंग्रेडिएंट यानी कि शो स्टॉपर कद्दू। कढ़ाई में अब हम ऐड करेंगे कद्दू, इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, साथ ही हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक, इन सभी स्पाइसेस को भी ऐड कर देंगे। सब चीज़ों को 2 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे, यहाँ तक कि मसाला कद्दू पर बिल्कुल लिपट जाए। अब बारी आती है इस स्टेप में कि हम कढ़ाई को ऊपर से ढक देंगे, आंच को बिल्कुल धीमा कर देंगे ताकि कद्दू आराम आराम से पके। कद्दू अपना पानी खुद छोड़ेंगे, इसीलिए अलग से पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं। बीच बीच में 1-2 बार चम्मच चला कर चेक किया जा सकता है कि आया हमारी सब्जी गल रही है या नहीं। जैसे ही आपके कद्दू यानी कि लौकी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, अब बारी आती है अगला स्टेप फॉलो करने की। इस रेसिपी को मैं बना रही हूँ अपने जरा मुनफरिद से चटपटे से स्टाइल में। रेसिपी को थोड़ा सा खट्टा मीठा करने के लिए जब हमारे कद्दू बिल्कुल गल जाएं, हम इसमें शामिल करेंगे आमचूर पाउडर, चीनी। इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इन्हें मिक्स कर लेंगे। हमने इसे बिल्कुल भी ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ना, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है ताकि जो हमारी शुगर है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए, और अगर आप गुड़ यूज़ कर रहे हैं तो उसे भी मेल्ट होने के लिए 2 से 3 मिनट लगते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से पकाएंगे। अच्छा, अगर आपको थोड़े मैश किए हुए कद्दू पसंद हैं तो आप चम्मच से कुछ टुकड़ों को हल्का सा मैश कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है अगर आपको पसंद है।
اچھا پرسنلی میں سچی بات بتاؤں تو مجھے بھی میش کدو پسند ہے, سو میں چمچہ ہلاتے ہلاتے کدو کو تھوڑا سا میش کر دیتی ہوں تاکہ وہ بالکل اس اکارڈنگ بنے جس طرح سے مجھے پسند.

神听。So finally हमारी recipe हो गई तैयार. अब बारी आती है चूल्हा बंद कर देंगे, ऊपर से खूब सारा धनिया शामिल करेंगे. आपकी मसालेदार सी खट्टी मीठी सी चटपटी सी लौकी हो गई तैयार. वेल उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी. अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप इसको किसके साथ नोश फरमाते हैं. वैसे तो रोटी के साथ भी इसका कॉम्बिनेशन बहुत सुपर लगेगा, लेकिन अगर आपको रोटी नहीं पसंद तो आप पूरी भी यूज़ कर सकते हैं. दोनों ही सूरतों में टेस्ट लाजवाब लगेगा. जी लिसनर्स, ये थी हमारी आज की द शो स्टॉपर मेन रेसिपी, जिसे मैंने अपने मज़ेदार से खट्टे मीठे से चटपटे से स्टाइल में बनाया. उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी. मज़ीद अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो इससे रिलेटेड, या फिर इस रेसिपी से कोई इंग्रेडिएंट आपसे मिस हो गया हो, या किसी स्टेप की आपको अच्छे से समझ ना आई हो, उन सभी चीज़ों के लिए 0115710097 है आपका और मेरा रابطے का नंबर. यानी इस नंबर के थ्रू मुझसे लाजमी शेयर कर सकते हैं. चलिए लिसनर्स, जैसा कि है आज फ्राइडे, और फ्राइडे होता है एक ऐसा दिन जिसमें सब फैमिलीज आपस में एक साथ मिल बैठ कर खाती हैं. मैं तो प्रेफर करूंगी कि आप आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें और फीडबैक मुझसे लाजमी शेयर करें. अब जी लिसनर्स, जरा आगे बढ़ते हैं एंड माय लवली डीवाज अपनी अगली रेसिपी के जाने. जहां अब जरा सब्जी की बात होगी अपने वेज लिसनर्स के लिए, अब जरा बात करते हैं इस मील को कंप्लीट करने के लिए. आज के स्पाइस किचन की जो सेकंड रेसिपी है वो आई एम श्योर मीट लवर्स को बहुत ज्यादा पसंद आएगी. आज हम बनाएंगे द सेकंड रेसिपी, मजेदार सी चटपटी तो मैं हर नहीं कहूंगी, लेकिन मजेदार सी स्पाइसी बारबेक्यू. अच्छा, बारबेक्यू किस किस को पसंद है? मेरा ख्याल है कि बहुत ही रेयर होगा कि जिसको बारबेक्यू ना पसंद हो, लेकिन क्लासिकल चिकन टिक्का बारबेक्यू तो सभी का फेवरेट होता है. मेरा तो पर्सनली बहुत ज़्यादा फेवरेट है एंड आई होप आप सभी का भी फेवरेट होगा. लिसनर्स, इसकी रेसिपी, फुल इंग्रेडिएंट, सभी चीज़ें आपसे शेयर करती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए. पर अभी वक्त हुआ है शो में एक अदद कमर्शियल ब्रेक का. लिसनर्स, कहीं मत जाइएगा, इसी तरह से जुड़े रहें, बंदे रहें हमारे संग, यानी रेडियो फजा 97.1 FM के संग. आपसे मुलाकात होती है कमर्शियल ब्रेक के उस पार. तब तक के लिए आप हमें इसी तरह से हमारे साथ रहें और हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहें. जी तो लिसनर्स, चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब, और तब तक मैं आपके किए हुए सभी मैसेजेस रीड कर लेती हूं ताकि ब्रेक के बाद आपकी तमाम तरह रिक्वेस्ट को दोबारा से शो में शामिल किया जाए. लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक.

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंगम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करे।
6: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
7: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।
6: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
7: You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
6: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात Faza 97.1 FM और DAB पर।
7: You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and DAB.

तो लिसनर्स, एक बार फिर से आप सभी को खुशामदीद करती हूँ द डीवा डायलॉग, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑन एयर होता है रेडियो फजा 97.1 FM में। और एक बार फिर से मैं आप सभी की होस्ट जैनब फातमा आप सभी के लिए हाजिर हूँ। तो लिसनर्स, जैसा कि है आज फ्राइडे और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मज़ेदार सी रेसिपी की, जो कि आज के मेन कोर्स को कर देगा मज़ीद कंप्लीट। सो आप सभी से शेयर करती हूँ मज़ेदार सी चिकन बारबेक्यू की रेसिपी।

सो इस रेसिपी को बनाने के लिए जो जो हमें इंग्रेडिएंट्स दरकार हैं आप सभी से शेयर करती हूँ. सो सबसे पहले हमें चाहिए चिकन 1 kg. आप बोनलेस या फिर बोन्स के साथ दोनों ही यूज कर सकते हैं, बट आपने शेप थोड़ी क्यूब साइज रखनी है और थोड़ी छोटी. हमारा अगला इंग्रेडिएंट है योगर्ट, जिसे हम शामिल करेंगे 4 to 5 tablespoons. साथ ही साथ हमारी रेसिपी में ऐड होगा जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 tablespoons. अब बारी आती है जरा बारबेक्यू को तीखा और खट्टा बनाने की. सो स्पाइसेस और खट्टापन ऐड करने के लिए हम शामिल करेंगे लेमन जूस 3 tablespoons. साथ ही साथ हमारी रेसिपी में ऐड होगा कच्चा पपीता पेस्ट, यानी कि रा पपाया पेस्ट 1 tablespoon, जो कि चिकन को सॉफ्ट बनाने के लिए हम यूज करते हैं. वैसे अगर आप सोच रहे हो कि ये आपको कहाँ से मिलेगा, सो ये इजीली किसी भी सुपरमार्केट से, जनरल स्टोर से आपको मिल जाएगा. लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं मिलता तो नॉर्मली आप कोई भी पपीता लेके उसका पेस्ट खुद ही नेचुरली ऑर्गेनिक तरीके से भी बना सकते हैं. इससे क्या होता है कि चिकन जल्दी गल जाता है, बिल्कुल टेंडर रहता है और जूसी रहता है. अब जरा आगे बढ़ते हैं स्पाइसेस की जानिब. सो इस रेसिपी में जो जो स्पाइसेस ऐड होंगे उनकी लिस्ट कुछ यूं है. सबसे पहले शामिल होगा लाल मिर्च पाउडर 1.5 tablespoons, कश्मीरी लाल मिर्च 1 teaspoon, कुटे हुए लाल मिर्च 1 tablespoon, धनिया पाउडर 1 tablespoon, सीरा पाउडर 1 teaspoon, गरम मसाला पाउडर 1 teaspoon, चाट मसाला 1 teaspoon. अच्छा, ब्लैक सॉल्ट यूज करेंगे हम यहाँ पे, जो कि टेस्ट को मजीद इनहेंस कर देगा 1.5 tablespoon. जर्दे का रंग यानी के फूड कलर हम यहाँ ऑरेंज रंग यूज करेंगे 1 चुटकी, जो कि जरा दिखने में हमारे चिकन को प्यारा, डिलीशियस और टेस्टी बनाएगा. सो आपने बिल्कुल एक छोटी सी पिंच यूज करनी है, बिल्कुल ज्यादा नहीं यूज करना, क्योंकि हमने जस्ट कलर चेंज करना है, हमने कोई भी इससे टेस्ट तो ऐड करना नहीं है. सो जस्ट अ टाइनी अमाउंट. और हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि नमक हसबे जरूरत हसबे जायका. सो डियर लिसनर्स, ये तो थे सभी इंग्रेडिएंट जो कि मैंने आप सभी से शेयर कर दिए. अब जरा बारी आती है अपने तमाम तर यानी कि सभी लिसनर्स और टीवास की रिक्वेस्ट को सुनने की. सो डियर लिसनर्स की हमारी एक प्यारी सी रिक्वेस्ट आई है एक खूबसूरत से कलाम को शो में शामिल करने की, और कलाम भी आबिदा परवीन साहिबा का है. सो जी आपकी रिक्वेस्ट को ज़रूर फुलफिल करेंगे और शो में शामिल करेंगे ये खूबसूरत सा कलाम. आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत कलाम और फिर कलाम के उस पार यहीं से अपनी इस रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे.

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
2: जीवन एक खेल है, इसे मुस्कुराओ

तूफानों से, ये तो तेरी उड़ान का इम्तिहान है। सिर्फ सांसे चलने का नाम जिंदगी नहीं, गिरते हुए संभलने का नाम जिंदगी है। बिखरता है वही

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर।

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटरपीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715-299-779 और विजिट अस एट
8: hayatweddings.co.uk।
9: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
10: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर।

कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात वापिस नहीं आती।

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and app.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and app.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and app.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर.
0: You are listening Islamic Transmission on फजा 97.1 FM and डैब.

न कोई और निखार। ये कागज कच्चे चमड़े का वो पाक परवरदिगार, तू गुमान करता है अपनी तदबीर पर बंदे, मगर चलती वही है जो चाहता है।

मौला जाने लकीर क्या है, फकीर क्या है, मौला जाने। तू मांग उससे, मांग उससे लकीर से न मांग, लकीर बनाने वाले से मांग।

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM।

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM।

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 एफएम और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 एफएम।

डरता है तूफानों से, ये तो तेरी उड़ान का इम्तिहान है। सिर्फ सांसे चलने का नाम जिंदगी नहीं, गिरते हुए संभलने का नाम जिंदगी है। बिखरता है वही

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 एफएम और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 एफएम एंड

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-201-07932।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG3 5QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
10: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
11: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब। यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM।

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.

0: You are listening to Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening to Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
2: जीवन एक खेल है, इसे मुस्कुरा

तूफानों से, ये तो तेरी उड़ान का इम्तिहान है। सिर्फ सांसे चलने का नाम जिंदगी नहीं, गिरते हुए संभलने का नाम जिंदगी है। बिखरता है वही।

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM.

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 एफएम और डैब पर।
1: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 एफएम।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो उस लासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: लासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, लासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए लासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
8: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।

कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात वापिस नहीं आती।

0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
1: ये कैसा सफर है, ये कैसी जुस्तजू, जमीन पे चलते हैं आसमान को देखते हैं, हो या मौला हक इलाही।

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB.

ना मैं लिखू ना तू लिखे ना कोई और लिखार, ये कागज कच्चे चमड़े का वो पाक परवरदिगार। तू गुमान करता है अपनी तदबीर पर बंदे, मगर आ मगर चलती वही है जो चाहता है किरदार।

0: मौला जाने लकीर क्या है।
1: इट्स कमर्शियल टाइम।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: आर्याना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
10: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
9: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
10: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
9: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
11: You are listening 97.1 FM.
12: You are saying. We are playing
13: Fazan 97.1 FM.
14: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
15: 97.1 FM।
0: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर।
16: यू आर लिसनिंग इस्लामिक ट्रांसमिशन ऑन फजा 97.1 FM एंड डैब।

0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
1: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और DAB पर.
0: You are listening Islamic Transmission on Faza 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ए, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?
2: साली तो मानी नहीं, कभी तो मानेगी।
1: पॉप, फिल्मी गाने,

0: या फिर इंग्लिश और अरबिक। तो सुनते रहिए
1: फजान 97.1 FM।
0: हो गया ना कमाल।
2: आप सुन रहे हैं इस्लामी नशरियात फजा 97.1 FM और डैब पर। अगर तुम

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
6: जबरदस्त हिट्स,
7: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर।
8: फजान 97.1 FM,
9: आई लव इट।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315066। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 0771522।
8: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays.
3: Foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं, चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-210-7932।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: This is a public service announcement.
8: The station.
9: That plays
10: foot tapping music.
11: Huzza 97.1 FM.
12: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड ऐप।
13: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं और

0: हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
1: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
0: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
2: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday.
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
3: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham. Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
8: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
7: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
8: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
7: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
9: You are listening 97.1 FM.
10: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
11: 97.1 FM.
12: This is a public service announcement.
13: The station
14: that plays
15: foot tapping music.
16: Hazar 97.1 FM.
9: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7, 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?
2: साली तुम मानी नहीं, कभी तो मानेगी।
1: पॉप, फिल्मी गाने,

0: commercial time.
1: Are you passionate about arts, culture, and making a difference in your community? Breeze Connect is looking for a creative and enthusiastic arts officer to help develop exciting projects, organize cultural events, and engage local communities through the arts. If you're ready to turn your creativity into a rewarding career, we'd love to hear from you. Apply online today by visiting www.breezeconnect.org.uk. Join Breeze Connect and help inspire communities through creativity.
2: हेलो नॉटिंगम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे

0: 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
5: जबरदस्त हिट्स,
6: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर।
7: फजान 97.1 FM,
8: आई लव इट।
9: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ हरियाणा सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126-132 Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटरपीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
8: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.

कोई से तुम खुद देखे है खफा कोई वफा भी करके है बुरा कोई ऐसा भी करता है भला कोई छोड़ो ना करता मैं ख्याली बातें लाता ना रिश्तों में पुरानी बातें बना इश्क की मिसाल कोई और बना इश्क पे सवाल कोई।

0: This is a public service announcement.
1: The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजा 97.1 FM पर।
2: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM.
7: Hits.
8: Music never sounded better.
9: Fazan 97.1 FM.
8: I love it.

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof.

0: open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
1: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
0: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
2: You are listening 97.1 FM.
3: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
4: 97.1 FM.
5: क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा. रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमराह चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ.
6: You're listening to Radio Faza 97.1 FM. Enjoy songs from legendary singer Kishore, only in Dedication Hour.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स, होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ए, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baisford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंगम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?

0: या फिर इंग्लिश और अरबिक। तो सुनते रहिए
1: फजान 97.1 FM।
0: हो गया।
2: You are listening to Radio Faza 97.1 FM. Enjoy songs in mesmerizing voice of legendary singer Kumar Sanu. Only in Dedication Hour. Kumar Sanu.

0: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
1: हाँ, एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
0: उसे बताया क्यों नहीं?
1: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं? वो किसी और को चाहती है।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: It's commercial time.
1: Are you passionate about arts, culture, and making a difference in your community? Breeze Connect is looking for a creative and enthusiastic arts officer to help develop exciting projects, organize cultural events, and engage local communities through the arts. If you're ready to turn your creativity into a rewarding career, we'd love to hear from you. Apply online today by visiting www.breezeconnect.org.uk. Join Breeze Connect and help inspire communities through creativity.
2: हेलो नॉटिंगम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
3: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
4: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
5: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
4: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
5: मुगल बिल्डर्स?
4: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
6: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
4: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
6: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो

0: रिकॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
1: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
2: यू आर लिसनिंग टू 97.1 एफ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday.
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126-132 Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715-299-779 और विजिट अस एट
8: hayatweddings.co.uk।
9: दिस इज 97.1 फाजल FM।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: आपके दिल की धड़कन रेडियो फजा 90।